फिरौन ने कहा कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो, सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे।

तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार।

और इनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाके था। जब ये लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करने लगे, यानी उस वक्त कि उनके हफ्ते के दिन मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आतीं और जब हफ्ते का दिन न होता तो न आतीं, इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे।

और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर कयामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है।

और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साएबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करो ताकि बच जाओ।

अगर तुम उनको सीधे रस्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो।

जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम हजार फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.
1: हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स और आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सुर कहानी। आज मैं आपके पास एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो शायद उतना ही गहरा भी है। हाउ इज अ सॉन्ग बॉर्न? क्या एक सॉन्ग सिर्फ कॉर्ड्स और लिरिक्स का नाम है, या फिर एक फीलिंग, एक मेमोरी, एक अनसुनी कॉन्वर्सेशन जो धीरे धीरे सुर की शक्ल ले लेती है? कभी कभी एक गाना किसी डायरी के आधे जुमले से शुरू होता है, कभी किसी बस राइड से, कभी हार्ट ब्रेक से, और कभी सिर्फ एक रैंडम वॉइस नोट से जो रात के 3 बजे रिकॉर्ड किया हो। हम जब कोई फिनिश सॉन्ग सुनते हैं तो हमें सिर्फ उसका फाइनल वर्जन नजर आता है, बट वी हैव नेवर थॉट अबाउट द काउंटलेस आवर्स दैट गो बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट सॉन्ग। आज की कॉन्वर्सेशन मेरे लिए पर्सनली भी बहुत खास है, बिकॉज एज समवन जो खुद म्यूजिक को सीख रहा है, लिख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टूडियो के अंदर असल में होता क्या है। हाउ डज इमोशन बिकम साउंड? हमारे इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत खास मेहमान। आज हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड वेरी क्रिएटिव माइंड से एड्रियन डेविड इमैनुअल। से एड्रियन सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि फीलिंग्स को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हैं। उनका काम मॉडर्न प्रोडक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के दरमियान एक बहुत खूबसूरत बैलेंस क्रिएट करता है। से एड्रियन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मोस्ट ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, और अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो इट वुड मोस्ट डेफिनेटली बी द ओएसटी ऑफ वो पागल सी। से एड्रियन स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी विद द इनॉग्रल सीजन ऑफ नेस्कैफे बेसमेंट एज ए मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और उसके बाद आपने अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी सर शराज उप्पल के साथ शुरू की। शुरू ही से सर मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक फरहान सईद, शफकत अमानत अली, सप्तान खालिद एंड मेनी मोर। Sir Adrian has composed and produced music for TV, dramas and films, including the most recent Love Thee song. So without any further ado, let me hand over the mic to our very special guest, Sir Adrian David.
2: Kya hal?
1: Sir, bilkul theek, aap kaise hain sir?
2: Behtareen. So good to have you. I mean, so good to see you after

0: I mean, you're having me.
1: Yes, it's a lovely opportunity, Aaj, to have you, sir, here. Because I've wanted to have you on the show. I've wanted to have this conversation with you. And production, aapko, since over the phone call, tha, ye pata hi, I've started doing it.
0: You've been bugging me since a while. Yeah.
1: So, just to know more, and personally, ye mere liye episode bahut faydemand ho gaya, I'm sure. So, let's just dive into it. And sir,
0: अच्छा मैं पहले ना एक एयर क्लियर कर दूं कि मैंने उठते ही कहा ना सो गुड टू हैव यू.
1: यस,
0: उसकी एक रीजन ये है कि हम ये जहां कर रहे हैं ना ये जगह मेरे लिए घर है क्योंकि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. देन आई हैव टॉट इन मैं बिजनेस फैकल्टी का स्टूडेंट था.
1: राइट,
0: बट देन आई टॉट इन दिस फैकल्टी. राइट, फॉर गुड 2 years. इट्स लाइक होम कमिंग.
1: सो फॉर मी यू आर एन एल्युमिनाई टू.
0: एब्सोल्युटली,
1: एन एल्युमिनाई, अ टीचर. एंड देन
0: वी हैड when we were studying here, I mean, we used to bug your dad the way you bug me, right? So, वो रेपो जो है वो तब से चली आ रही है, वो एक रिलेशन तब से चला आ रहा है.
1: Right.
0: और I mean, it's so good to be here and again talking to you on this platform.
1: I'm so happy to hear that, sir. Sir, if I just dive right into it, तो सबसे पहले, like first and foremost, where does a song start? Like उसकी beginning किस चीज से होती है? Does it start with the lyrics? Does it start with the melody? Quick chords? मतलब all in all, what is the point where you think कि हाँ अब एक गाना start हुआ है?
0: यार देखो, गाना start होता है emotions से.
1: Right.
0: ठीक है? It's neither the lyrics nor the melody, nothing else. It starts with an emotion, right? दो तरीके होते हैं. हम दोनों चीजों को साथ साइड बाय साइड लेके चलेंगे. एक है कि यू आर अ कमर्शियल प्रोड्यूसर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर अदर आर्टिस्ट्स और कंपनीज और से फिल्म्स और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर योरसेल्फ और यू आर मेकिंग म्यूजिक योरसेल्फ, यू आर मेकिंग कॉम्पोजिशंस, यू आर डूइंग व्हिच इवेंचुअली ईदर गेट सोल्ड और यू रिलीज देम एज सिंगल्स. राइट,
1: राइट.
0: तो जब तो यू आर डूइंग इट फॉर अदर पीपल तो दे कम अप विद द ब्रीफ, राइट? एंड over the years you have to train yourself in a way ke when a certain person comes with a certain brief. So obviously art in any form is portrayal of emotion, and that is exactly where I said ke gana emotion se shuru hota hai, right? To aapko basically you have to train yourself in a way ke aapne apne aap ko us emotion mein leke aana hai, and then automatically things start happening from there on, right? Jahan tak aap apna kar rahe ho to apni creation mein bhi ya to aap apne aap ko kai dafa टारगेट्स देते हो, राइट? कि यार अच्छा मैंने ना दो गाने बहुत एनर्जी वाले बनाए हैं, दो गाने मैंने रोमांटिक बनाए हैं, नाउ आई नीड अ सैड सॉन्ग. से यू गिव योरसेल्फ टारगेट्स, राइट? दूसरी चीज होती है जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं आमद, राइट? आमद तो बेटा किसी भी टाइम किसी भी चीज की हो सकती है. इट कैन स्टार्ट विद अ लाइन एज इन लिरिक, इट कैन स्टार्ट विद अ मेलोडी. अभी यू सेड ना कि goes from a recording on your probably a voice note on your phone.
1: Yeah.
0: Right? कई दफा क्या होता है कि आपको जैसे OST that you talked about is your favorite OST.
1: Yes.
0: I did not come up with the melody for that. Right? I had this line in my mind के अखियानू तेरी दीद दी पना चाहिए. And then I came up with the melody about it. Somehow I liked the thought. तो जहाँ बात है कि गाना lyric से शुरू होता है या melody से, it can start with either. It can start with कई दफा क्या होता है जैसे मैंने when I did Kashmir beats, तो मैंने उसमें एक गजल की. अब वो गजल पहले से लिखी हुई थी, so I composed that गजल.
1: Right.
0: Mostly क्या होता है कि I come up with the melody. And then I get a lyricist to write on it.
1: Right.
0: कई दफा ये होता है कि when you're making the melody, तो आपको एक लाइन भी आ जाती है साथ ही. And then you ask the lyricist to keep that line in the song because that's the original emotion and the idea.
1: That's the original thought.
0: That's the original thought, right? और आप basically चूंकि it's a portrayal of emotion, तो आप basically जो भी बंदा जिसको भी आप direct कर रहे होते हैं, someone who's writing the song, और if you have written it and you're asking someone to co-compose it with you, say, तो आप उसको कहते हो कि यार इस मूड में रहना है. ठीक है, तो इट कैन अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट कैन ईदर स्टार्ट, इट कैन वर्क ईदर वेज. इंडस्ट्री वाइज क्या होता है, इंडस्ट्री वाइज पुराने जमानों में चूंकि डिफाइंड रोल्स थे,
1: ठीक है
0: आगे आई प्रोबेबली विल गेट इन टू द कन्वर्सेशन तो आई टेल यू इन डिटेल, बट पहले डिफाइंड रोल्स होते थे. लिरिसिस्ट होता था, वो गाना लिखता था जाके. फिल्म डायरेक्टर एक लिरिसिस्ट के पास जाता था. हमारे पेरेंट्स गए, हमारे इरा का जो म्यूजिक है वो ज्यादातर डिफाइंड है फिल्म म्यूजिक से.
1: Right.
0: तो कई दफा डायरेक्टर्स जाते थे, वो लिरिसिस्ट से लिरिक्स लिखवा लेते थे कि हमें ये बात चाहिए इस जगह पे. एंड देन दे यूज्ड टू गो टू म्यूजिक कंपोजर्स कि भाई इसके ऊपर धुन बना दो.
1: ठीक है, तो वो सारी चीज जो थी वो डिफाइंड थी,
0: डिफाइंड थी.
1: एक बंदे से दूसरा से तीसरा.
0: चूंकि एक वर्ड आ गया जिसे आप बहुत सुनते होंगे, सिंगर सॉन्ग राइटर. ठीक है, अब जो सिंगर है वो ही सॉन्ग राइटर भी है, वो ही प्रोड्यूसर भी है, वो ही कंपोजर भी है. तो इस चीज में ईदर वन कैन हैपन. यू कैन ईदर मेक द मेलोडी फर्स्ट. आजकल ज्यादातर मेलोडी पहले बनती है, देन लिरिसिस्ट कम्स इन. ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आजकल. पुराने दौर में पहले लिरिक्स लिखे जाते थे और फिर मेलोडी बनती थी.
1: राइट.
0: मेलोडी लिरिक गाइडेड होती थी मेलोडी. अब मेलोडी गाइडेड होते हैं लिरिक्स.
1: Right. So the contrast has changed. It has
0: inverted basically.
1: आपने सर अभी एक सॉन्ग राइटर वाली जो बात की है, वी विल गेट इन टू दैट कॉन्वर्सेशन. बिफोर दैट लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड लेट्स गेट इन टू दैट आफ्टर द ब्रेक.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ होरब शम्स, आपका होस्ट। यूर लिसनिंग टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुर कहानी। हमारे साथ गेस्ट हैं सर एड्रियन डेविड। और सर, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सॉन्ग राइटिंग और सिंगर सॉन्ग राइटर वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। सर, एक सॉन्ग राइटर, एक प्रोड्यूसर, एक लिरिसिस्ट, इन सारों में जो लिंक है और जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आके फेड हो जाता है, कहाँ पे वो मर्ज हो जाता है? What are the basic differences and what are the basic roles of all these different people?
2: देखो, जो सॉन्ग राइटर है ना, पहले ही होता था, जैसे मैंने पहले बताया कि डिफाइंड रोल्स थे, राइट? अ लिरिसिस्ट यूज्ड टू बी एक शायर होता था,
1: राइट?
2: ठीक है। और बिकॉज पुराना दौर एक बड़ा लिटरेरी दौर था, लिटरेचर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड लिटरेचर, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं ना, फैज अहमद फैज साहब, अहमद फराज साहब, ठीक है। तो इवन वेस्ट में भी हम एमिली ब्रॉन्टे पढ़ते हैं, शार्लेट ब्रॉन्टे पढ़ते हैं, ठीक है, लिटरेचर बड़ा रिच था, राइट? तो अदब में पीपल यूज टू नॉट मिंगल अराउंड विद ईच अदर्स, उनकी जो वो थी ना, डोमेन्स थी, वो बड़ी क्लियर थी। एक शायर शायरी होता था,
1: ठीक है,
2: एक कंपोजर जो धुन बनाता है वो कंपोजर ही होता था, एक म्यूजिक डायरेक्टर ही होता था, राइट?
1: राइट।
2: मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ एवोल्यूशन का, क्योंकि एवोल्यूशन ना हो तो वी आर नथिंग विदाउट एवोल्यूशन, वी आर सेल्फ्स आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, राइट? तो पॉइंट इज के लोगों ने कोशिश की कि यार मैं खुद भी तो गाना लिखूं, एक इमोशन है जो मेरे में है, राइट? तो मैं उसको क्यों ना पोर्ट्रे खुद करने की कोशिश करूं। तो उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की अबाउट के यार शायरी होती कैसे है,
1: राइट?
2: उसके क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने रखना होता है जहन में, और वो सोच के उन लोगों ने गाने लिखने
1: काफी रदीफ
2: बहर क्या होनी चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ देख के उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी, ठीक है। उनमें से कुछ ने बहुत अच्छी की, कुछ सीखते रहे और वक्त के साथ अच्छे हो गए, राइट? तो जब एक सिंगर अपना गाना खुद लिखता है ना, ठीक है, तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, राइट? वो अपना गाना कंपोज भी जब खुद करता है और लिखता भी खुद है और गाता भी खुद है,
1: ठीक है,
2: तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर,
1: वन मैन शो जब हो जाता है
2: तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, ठीक है,
1: राइट?
2: अच्छा, कुछ लोग सिंगर सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर्स भी हैं, राइट? वो गाने सिर्फ वो बनाते ही नहीं है, गाना देखो ना, गाने में क्या क्या चीजें हैं, गाने में उसके वर्ड्स हैं जो कि लिरिक्स हैं, गाने में तर्ज है जो कि कॉम्पोजिशन है,
1: धुन है,
2: ठीक है, फिर गाने के अंदर म्यूजिक है उसका, और फिर गाने में वोकल्स हैं, राइट?
1: राइट,
2: हमारे यहाँ, ठीक है, हम गाना इंस्ट्रूमेंटल हो तो हम उसे गाना ही नहीं मानते। वेस्ट में कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा गाना है और हम जैसे लोग उसमें वोकल ढूंढ रहे होते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ सॉन्ग ना, आई मीन देयर कैन बी अ सॉन्ग दैट डज नॉट हैव वोकल्स, इट्स स्टिल अ सॉन्ग, राइट? जैसे हम बिथोवन की सिम्फनी सुनते हैं, दे आर सॉन्ग्स,
1: दे आर फुल सॉन्ग्स,
2: दे आर कंप्लीट सॉन्ग्स, बट उनमें वोकल नहीं है, तो हम उनको
1: वो सारा पियानो है,
2: ठीक है। खैर, एनीवेज, तो इसमें ये है कि पहले जमाने में लिरिक्स लिखे जाते थे, उसके ऊपर धुन बनती थी, फिर म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक अरेंजर वो होता था जो ये बताता, अब आपने एज अ कंपोजर कहा कि मुझे इस गाने में से वायलिन का इंट्रो चाहिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने इस चीज को नोट कर लिया। अब उस वायलिन पे बजना क्या है, राइट? इट इज अ वेग स्टेटमेंट ना कि मुझे शुरू में वायलिन चाहिए, वायलिन बजाएगी क्या, ये म्यूजिक डायरेक्टर देखता था या म्यूजिक अरेंजर देखता था,
1: राइट?
2: म्यूजिक डायरेक्टर स्लैश म्यूजिक अरेंजर,
1: ओके,
2: ये देखता था, राइट? जिसको आज हमने प्रोड्यूसर का नाम दे दिया है,
1: ओके,
2: राइट? तो प्रोड्यूसर्स ने भी आजकल, प्रोड्यूसर कैन आल्सो बी समवन हु इज सेइंग कि यार मुझे ये चीज चाहिए, और म्यूजिक अरेंजर आके एक्चुअली काम करता है, राइट? तो ये रोल्स थे डिफाइंड,
1: ठीक है।
2: अब चूंकि पीपल आर डूइंग एवरीथिंग देमसेल्व्स, बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं, खुद करते हैं, तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर कहना आसान है कि वो अपना गाना लिखता भी खुद है, धुन भी खुद बनाता
1: है, सॉन्ग राइटर भी है,
2: एंड इट इज वेरी गुड एज वेल। पता है क्या, देखो चूंकि हमने पहला सवाल यही किया था कि म्यूजिक एक इमोशन है, एक आर्ट है, आर्ट एक इमोशन है, पोर्ट्रेयल ऑफ एन इमोशन, राइट? तो मेरे इमोशन को मेरे से बेहतर तो कोई फील नहीं कर सकता,
1: ऑफ कोर्स,
2: और तुम्हारे इमोशन को तुमसे बेहतर कोई फील नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें एक चीज की थोड़ी सी नॉलेज है ना, तो तुम अपने इमोशन को अपनी ऑडियंस तक बेहतर ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, उसमें ये कि इसला ले लो किसी शायर से, इसला ले लो। हाँ, किसी शायर का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने एक दफा, एक और मेरा OST है कुछ ना कहना, उसके लिरिक्स आए, वो स्क्रिप्ट मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मुझे लगा कि हाँ यार, इस इमोशन को मैं धुन से पोर्ट्रे कर सकता हूँ। राइट, आई वांटेड टू डू इट। कश्मीर बीट्स की जो गजल थी उसका भी ये था कि वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, मेरे एक शायर दोस्त थे, उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट भेजा और मैंने उसको पढ़ा, एंड आई सो रिलेटेड टू दैट इमोशन दैट आई कंपोज्ड ऑन इट। राइट, तो आपका इमोशन आपसे बेहतर तो कोई पोर्ट्रे नहीं कर सकता, इन वन ऑड केस कि जहाँ पे आप किसी ने लिखा इतना अच्छा है कि यार आप कहते हो हाँ। ये मैं बात कर रहा हूँ इफ यू नॉट वर्किंग फॉर अ क्लाइंट।
1: Okay.
2: अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसने तो आपको बांध दिया ना,
1: फील दिया कि यही करना है, वही करना,
2: ठीक है। अब चूंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर है, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो इसी तरह है कि तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम वो बना रहे हो,
1: ठीक है।
2: इसलिए तुम देखो कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशन ज्यादा है, ठीक है। जो क्लाइंट का म्यूजिक है उसमें एक डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसमें सिचुएशनल म्यूजिक है,
1: वो एक सिचुएशन है, उसने इमोशन बना दिया, अब आपने उस इमोशन को पहले फील करना है और फिर उस चीज में काफी चीजें लॉस्ट हो जाती हैं।
2: यार लॉस्ट देखो डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को ट्रेन कैसे किया एज ए म्यूजिशियन। लॉस्ट किसी भी फॉर्म में लॉस्ट, दे आर नॉट लॉस्ट, इट्स जस्ट दैट यू आर बाउंड।
1: ओके,
2: यू आर बाउंड टू फील अ सर्टेन वे। प्रोबेबली आई हैव हैड अ वेरी गुड डे, आई एम वेरी चीयरफुल, बट माय क्लाइंट कम्स इन एंड आस्क्स मी टू मेक अ सैड सॉन्ग, राइट? नाउ आई डीप डाउन इनसाइड आई एम नॉट फीलिंग सैड, बट आई हैव टू ट्रेन माय म्यूजिकल एबिलिटी टू अ वे दैट इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग सैड आई हैव टू टेक माय सेल्फ टू दैट जोन एंड देन क्रिएट समथिंग दैट फिट्स द सिचुएशन।
1: Okay.
2: But if I'm doing independent music, if I'm today feeling very cheerful, very happy, I'd probably make a happy song. Right?
1: If you're doing it for yourself.
2: Yeah. If I'm doing it for myself and if I'm doing independent music, I'll rather make a happy song. But if you're working on a brief, if you're working for a client, what you have to do, you're a little bound. But it all depends on how you've trained yourself. If you've trained yourself to an extent jahan you can easily take yourself to in that zone.
1: Right.
2: That's good for you.
1: So when you arrange something, ek aapka music ban gaya, you've composed something. And this is a little moving on to the next question. Ke jab aapne kuch bana liya, when do you decide ke am I using digital instruments or am I using traditional instruments? Like for example, guitar jo hai. Guitar aap kisi guitarist se bhi bajao. सकते हैं, बट वो आप डिजिटली भी मीडी पे बजा सकते हैं। सो वेयर डू यू डिसाइड के क्या चीज बेटर है एंड क्या चीज एक ट्रेडिशनली करवानी चाहिए या फिर वो डिजिटली भी उतना ही काम कर देगी?
2: देखो, मेरी इस चीज के ऊपर टेक बड़ी सिंपल है। अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लाइव ही बजने चाहिए।
1: ठीक है,
2: डिजिटली उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया और फिर आपने एक चीज और देखनी है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपके जितना भी आपका साउंड डिजाइन है, साउंड डिजाइन इज द कंप्लीट म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, तो क्रिकेट टीम में 12th मैन भी होता है, वो पानी भी पिलाने वाला चाहिए होता है,
1: राइट?
2: तो आपने उस हिसाब से आप यू कैन सी के यार अच्छा, ये एक चीज है, ये मुझे सिर्फ वाइब के लिए चाहिए, इट्स नॉट गोना बी वेरी अपफ्रंट इन द मिक्स, सो आई कैन टेक अ चांस दैट आई कैन, यू नो, आई कैन डू इट डिजिटली, राइट? बट इफ देयर इज समथिंग दैट इज इन द फोरफ्रंट ऑफ योर मिक्स and it can be done analog. Analog is better because obviously the amount of feel that you have, you have a feel of a player in it. There's a realistic feel in it, right? अच्छा, अब जहां तक बात है सिंथ की या इन चीजों की, जो टोन्स ही डिजिटल टोन्स है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट से टोन बने हैं, वो तो आपको डिजिटली ही करने हैं, ठीक है? उसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उनके हार्डवेयर ले लो, तो या सॉफ्टवेयर से आप उन्हें सॉफ्टवेयर एमुलेशन से उन्हें कर लो,
1: तो वो हम किसी भी तरह से, जस्ट डिपेंड्स के किसी किस चीज की मिक्स में कितनी इम्पोर्टेंस
2: है, एब्सोल्युटली, ठीक है? और ये भी आप देख रहे हो कि आपने आपका गाना चलना किस मीडियम पे है,
1: ठीक है?
2: राइट, जैसे आप DVCs कर बनाते हो, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स बना रहे हो, पहले DVCs होती थी, अब डिजिटल है, DVCs है, राइट? तो एक इंसान ने एक चीज सुननी है एज एक इश्तेहार के तौर पे, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट है, और उसने मोबाइल पे मोस्ट प्रोबेबली उसे स्किप कर देनी है,
1: right? तो उसमें मेहनत की इतनी, आई थिंक
2: तो वहां पे उन केसेस में यू डोंट पुट इन द एफर्ट ऑफ कॉलिंग अ पर्सन. You try to, you know, achieve it digitally.
1: Calling that person, paying that person.
2: Obviously, obviously, क्योंकि उन चीजों के उतने it comes down to budgets as well. अच्छा, कई दफा कुछ advertisements के budget बहुत अच्छे होते हैं. But you still don't feel the need of calling a person and getting it played when it can be done. In a way, जो के क्योंकि एक इश्तिहार है यार. Let's be honest.
1: It's just going to be skipped.
2: How many people have you heard जो इश्तिहार में music सुनते हैं? क्योंकि इश्तिहार is not supposed to make you concentrate on the music. It is supposed to make you concentrate on the product. That's being sold. तो अगर मेरा music A.R. Rahman type music हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे आप product तो नहीं खरीदोगे, आप तो मेरा music खरीद रहे, right? So you have to have that business sense as well कि यार मैं जो भी बना रहा हूँ उसमें highlight product है, ठीक है? जब आप गाना बना रहे हो तो गाने में आपने यही देखना है कि किस चीज की इम्पोर्टेंस कितनी.
1: So it's it comes down to importance, कहाँ आपका music use होना है, everything.
2: Absolutely. And then I would clear this air. बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि सब कुछ डिजिटली हो जाता है. बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है? बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं, बहुत रियलिज्म आ जाता है डिजिटली, बट वो एनालॉग की एक फील है जो नहीं, जो के रेप्लिकेट आज तक तो नहीं हो सकी. आगे द वे वी आर प्रोग्रेसिंग एज एंड एज आई सेड कि आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ एवोल्यूशन. यू नेवर नो, वी
1: एआई की एवोल्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो वी नेवर नो के एआई भी इतना स्ट्रांग
2: नहीं. देखो, एआई को तुम डिजिटल नहीं कह सकते हो कि वो डिजिटली, यू आर नॉट प्लेइंग इट, ठीक है? एआई भी ह्यूमन डेटा को लर्न करता है और फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको.
1: इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू,
2: इट्स नॉट डूइंग समथिंग न्यू.
1: वो पुराने को यूज करके किसी और पुराने के साथ मिक्स करके.
2: हियर
1: वी विल टेक अनदर ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद हम इसी कॉन्वर्सेशन को वापस कंटिन्यू करते हैं.
2: डन.

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया. प्रोग्राम है सुर कहानी और मेरे साथ बैठे हैं सर एड्रियन डेविड इमैनुअल. सर, हमने अभी बात की डिजिटल और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उनकी मिक्सिंग के बारे में. मूविंग ऑन, मिक्सिंग और मास्टरिंग जब हम बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस उनमें क्या है और बेसिकली है क्या मिक्सिंग मास्टरिंग?
2: देखो, जब आप गाना बना लेते हो ना पूरा, आपके पास उसका म्यूजिक आ गया, सारे उसके एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं. अब आपने उन चीजों को अरेंज करना है. देखो, एक गाना जो है एक सोनिक फील्ड है, स्टीरियो फील्ड, राइट? और स्टीरियो फील्ड ऐसे ही है जैसे एक कमरा, राइट? अब उस कमरे में तुमने चीजों को अब तुमने भर लिया, एक दफा सामान आ गया,
1: ठीक है.
2: आप घर शिफ्ट करते हो ना, घर का एक सामान आप एक जगह पे लाके रख देते हो,
1: ठीक है.
2: अब उस कमरे को जब सेट करते हो ना, दैट इज मिक्सिंग,
1: राइट?
2: ठीक है. अच्छा, अब मास्टरिंग क्या है? मास्टरिंग है कि अब चीजें सेट हो गई,
1: ठीक है.
2: अब नाउ यू bring a painting, you put a painting, that's the final
1: finishing touches.
2: Final finishing touches are done in mastering and gaane ki loudness dekhi jati hai.
1: Okay.
2: Mix mein basically चीजों को क्लीन किया जाता है,
1: okay.
2: उन्हें अपनी अपनी जगह पे रखा जाता है. हाँ, लेकिन उनको वो शाइन कैसे होती है, वो फाइनल टच क्या है, दैट इज मास्टरिंग, राइट? तो गाना क्लियर और क्लीन साउंड करना शुरू हो जाता है मिक्स के बाद,
1: ठीक
2: है. बट वो एक जान और एक पावरफुल प्रोडक्ट बनता है मास्टरिंग के बाद.
1: आपसे मुझे पर्सनली सीखने को बहुत कुछ मिला है. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स, फॉर मोर थिंग्स टू लर्न ऑन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. मैं हूँ आपका होस्ट हुरब शम्स. दिस इज रेडियो FM 92.6 UCP की दुनिया. आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर कहानी. खुदा हाफिज़.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलामुअलैकुम। FM 92.6 UCP की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कमाल, और आप सुन रहे हैं फैकल्टी हार, जिसमें आज हम फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की बात करेंगे। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में से आज हमारे पास PhD स्कॉलर मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे उनके वास्ट डिग्री, जो कि एक बहुत ही फेमस डिग्री बनती जा रही है पाकिस्तान में, और UCP में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर वहीद अहमद खान, जो कि PhD स्कॉलर हैं और पिछले 5 साल HOD भी सर्व कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ IR में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से थोड़ा करवा दें,
4: क्योंकि ये जो आवर है फैकल्टी आवर, ये जो है थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए। मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी जो पर्सनल है वो भी उसी में, क्योंकि जो एज ए स्टूडेंट जब मैं डिफरेंट फेजेस से गुजरा हूँ, तो IR जब मैंने भी किया, और आजकल भी जिस तरह कई स्टूडेंट हैं, कई नए नए प्रोग्राम्स या नई नई डिग्रीज आ रही हैं, तो वो काफी हद तक कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने भी जब FA किया तो काफी लोगों का ये था कि जी CSS करना है ये वो, तो मैंने वो अपना BA कर लिया इंग्लिश लिटरेचर के साथ। फिर ये कि उस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री बिल्कुल नहीं थी, अब तो मैं हर काफ़ी लोग जानते हैं इस

0: आमद गया और वहाँ पे ये मैंने मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया वहाँ से। तो फिर मुझे एक किस्म का कह लें कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मज़ीद डेवलप हुआ, और वहाँ से फिर ये जो पीएचडी का एडमिशन मेरा हो गया स्कॉलरशिप वहाँ पे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वहाँ मैंने अपना 6-7 साल में डिग्री कम्प्लीट की पीएचडी की, और फिर वहीं पे मैंने जो केंटकी है एक ब्रशा यूनिवर्सिटी केंटकी में, वहाँ पे 5 साल मैंने टीचिंग भी की। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ भी हुआ। तो जब वापस आते हैं तो आप बड़ा आपका माइंड ओपन होता है बड़ी चीज़ें जो है आपको, और जब वापस आके देखते हैं तो वापस आके मैंने फिर यहाँ यूएमटी में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर में आके ज्वाइन किया था एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही। वहाँ भी 3 साल मैंने वहाँ काम किया, और फिर दोबारा मुझे जाना पड़ा कैनेडा कुछ देर के लिए, और वापस मैं आया हूँ कि 5 साल पहले यूसीपी में। तो यूसीपी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने 5 साल वहाँ पे किया। तो ये सारा जो है मेरा मेन कह लें कि जर्नी कह लें, और आई अंडरस्टैंड कि ये स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों से गुजरते हैं। तो ये मेरा ख्याल है जो बाकी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जितना चीज़ें क्लैरिफाई कर सकें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ कि बंदे को समझ नहीं आती, मार्केट में कई चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं, नई डिग्रीज आ रही हैं, नए स्किल्स की रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरा ख्याल उस वजह से जो है, और इस तरह के प्रोग्राम्स भी बड़ा अच्छा है कि स्टूडेंट्स को भी इसमें गाइडेंस हो, और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी, काफ़ी हद तक पेरेंट्स को भी। मैं जब आईआर की में गया हूँ तो पूरे पाकिस्तान में किसी इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था कि उस वक्त यही होता था जी मैं इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या जनरल बीए कर लेते हैं लोग। तो जब बल्कि मेरे पेरेंट्स या फैमिली वाले भी पूछते थे कि आई ये कौन सी डिग्री है, तुमने बनना क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अच्छा हम कोशिश करेंगे। अब तो मेरा काफ़ी एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी जो करियर में बच्चे हमारे कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है कि ये हम कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें आज।
1: सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपने लिटरेचर से आईआर में शिफ्ट किया था, तो लिटरेचर से आईआर में शिफ्ट करने की आपकी कोई बेसिक वजह?
0: मेन तो था कि लिटरेचर में जाने की वजह ये नहीं थी कि मैं एमए इंग्लिश या इंग्लिश का टीचर बनना चाहता था। लिटरेचर में जाने का मकसद ये था कि उस वक्त ये ट्रेंड चल रहा था कि जी अगर आपने सीएसएस वगैरह, मेन मेरा सीएसएस का ऑब्जेक्टिव था। तो अभी भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक बच्चे ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं हमने सीएसएस करना है आगे, उसको गवर्नमेंट सर्विस में करना है। तो मेन मोटिवेशन तो पहले उसमें था, लेकिन उसमें कुछ किसी ने ये फर्दर बताया कि अगर आपने सही करना है अच्छी तरह सीएसएस, जिस तरह गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और ये वो, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री। तो बीए तो मैंने कर लिया, उसमें ये होता है कि आपकी इंग्लिश ज़रा बेहतर हो जाती है। तो मेरा कह लें कि किसी ने कहा जी एमए चले आप बीए तो आपने कर लिया, लेकिन अब मास्टर्स जो है आप उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में करें ताकि इसकी ज़्यादा रेलिवेंस है। और अभी भी हमारे काफ़ी बच्चे इस तरह आते हैं, और हम भी अगर किसी को गाइड करते हैं कि तो सीएसएस इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन सीएसएस के लिए बड़ा अच्छा। तो मेरी मेन मोटिवेशन उसमें थी, लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरा फिर रुझान थोड़ा सा रिसर्च की तरफ हो गया, तो मैंने सीएसएस की टाइम दी ही नहीं। मेरा था कि मैं भी अब जो है ना रिसर्च और टीचिंग, वो बात कर एक चीज़ में जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो फिर मैंने वो सीएसएस को छोड़ के तो आगे रिसर्च की तरफ चला गया।
1: सर, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो डिग्री है ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या क्या बच्चों को पढ़ने को मिलता है?
0: अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस अगर बेसिकली तो ये कह लें कि आजकल बल्कि इसकी मजीद रेलिवेंस है। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 20 साल पहले जब मैंने मास्टर्स वगैरह किया था तो ये इंटरनेट भी बहुत रेयर होता था या सेल फोन तो बिल्कुल था ही नहीं। तो लेकिन अब ये देख लें कि वी आर वेरी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। तो एक तो टाइटल से भी ये है कि जी इंटरनेशनल रिलेशंस के जी ग्लोबल लेवल का ये जो है रिलेशंस का है। तो टेक्निकल चीज़ें तो डिफरेंट हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या जो डिग्री करने के बाद, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाता है कि आप एक जो लोकल थिंकिंग से निकल आते हैं। फिर आप आजकल ये इसकी मज़ीद रेलिवेंस है कि ये आईटी में भी लोगों का, बच्चों का रुझान ज़्यादा होने की वजह यही है कि हम वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड। अब बच्चे जॉब्स भी ग्लोबल कर रहे हैं इवन आईटी के आगे बैठ के, और ये यूट्यूब वगैरह में भी ये वो सारा। तो वी आर इन ए वेरी ग्लोबल काइंड ऑफ वर्ल्ड। तो इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री जो है ये आपको प्रिपेयर करती है। मेनली हम इसका फोकस तो होता है कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के, जिस तरह नेशंस में यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका रोल क्या है अपना ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे मुकाम क्या है। तो इसी कॉन्टेक्स में फिर आगे दूसरी चीज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस और ये सारी एनजीओज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इन सब के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं। जिसमें हम एक फुली प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट

0: कि वो जितने भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जिस तरह ये आईटी में काफ़ी बच्चे जो हैं, हमारे आईआर के भी बच्चे काफ़ी, जिस तरह कंटेंट राइटिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, ये जो ऑनलाइन कई और किस, तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जो है ये चीज़ें आपको एक्सपोजर हो जाता है। तो आईआर की डिग्री ओवरऑल इट प्रिपेयर्स यू अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिकल हैपनिंग्स, सोशल कल्चरल सारी चीज़ें, तो यू आर एक्सपोज टू ए ब्रॉडर काइंड ऑफ सिस्टम।
1: सर आपको 5 साल हो गए हैं यूसीपी में, जिसमें आपने एज ए एचओडी सर्व किया है, तो आपका एज ए एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ आईआर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है?
0: यहाँ जी बड़ा अच्छा है, ये प्राइवेट सेक्टर में आई से दैट कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर के रेड टेप बहुत कम होती है। तो हम कोई भी इनिशिएटिव, अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो यू कैन इनिशिएट न्यू डिग्रीज, न्यू प्रोग्राम्स, यू कैन टेक सम इनिशिएटिव्स। तो पब्लिक सेक्टर में बाज़ का तो अप्रूवल और ये वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें होती हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस है यूसीपी का। जब मैंने ज्वाइन किया था यूसीपी, उस वक्त जो है बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहा था। मैंने ज्वाइन किया 2020 में, मेरे ख्याल 2017 में जो बीएस आईआर जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई थी, तो बीएस आईआर सिर्फ चल रहा था, उसके भी 4-5 सेमेस्टर हुए थे। तो मैंने जब आया तो मैंने कहा इसके फर्दर आगे चलें। मैंने आते साथ ही अगले साल हमने वो एमफिल मास्टर्स की जो डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको एचईसी से प्रूव करवा के उसको स्टार्ट किया, और वो बड़ा कामयाबी से अभी चल रहा है। तो बेसिकली वो स्कॉलरली या रिसर्च साइड पे चीज़ें चली जाती हैं। तो एमफिल का उससे किसी भी डिपार्टमेंट के असल में स्ट्रेंथ यही होती है कि उसमें कितना रिसर्च कल्चर है, कितनी वो चीज़ों पे हो रही है रिसर्च। तो एमफिल से हमारा बड़ा अच्छा बूस्ट मिला, उसमें बीएस के प्रोग्राम को भी काफ़ी होता है। तो और फिर जो है अपना हमने पीएचडी शुरू की, अभी 1 साल हो गया, तो उससे भी रिसर्च का तो डिपार्टमेंट की ग्राउंडिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और रिसेंटली तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, हमने बीएस पॉलिटिकल साइंस भी शुरू कर दिया, तो ये भी उसका एक हिस्सा कह लें, तो इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस है।
1: जी सर, ऐसी ये चीजें। लिसनर्स, अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और सर से मजीद सवालात के बारे में पूछेंगे, जिसमें हम आईआर के स्कोप के बारे में पूछेंगे, यूसीपी की क्या अचीवमेंट्स हैं आईआर के हवाले से, ये सब कुछ हम सर से बात करेंगे। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: इन सदाए लाहौर है, इन सदाए UCP है। लुत्फ़ान गुश बदहित FM 92.6 जहाने UCP।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: after short break.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

0: रुख कोया, तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 2000।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।
2: ये आवाज है

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।